इसमें खुली हुई निशानियां हैं जिनमें से एक इब्राहिम के खड़े होने की जगह है। जो शख्स इस मुबारक घर में दाखिल हुआ उसने अमन पा लिया, और लोगों पर खुदा का हक यानी फर्ज है कि जो इस घर तक जाने का मकदूर रखे वो इसका हज करे, और जो इस हुक्म की तामील न करेगा तो खुदा भी अहले आलम से बेनियाज है।

और बहुत से नबी हुए हैं जिनके साथ होकर अक्सर अहलुल्लाह खुदा के दुश्मनों से लड़े हैं, तो जो मुसीबतें उन पर राह खुदा में वाक़े हुई उनके सबब उन्होंने ना तो हिम्मत हारी और ना बुजदिली की, ना काफिरों से दबे, और खुदा इस्तक़लाल रखने वालों को दोस्त रखता है।

0: now.
1: जो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में खुदा को याद करते और आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर करते और कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, तूने इस मखलूक को बेफायदा नहीं पैदा किया, तू पाक है, तू कयामत के दिन हमें दोजख के अजाब से बचाइयो।

लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते रहे उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और उनमें हमेशा रहेंगे। ये खुदा के हां से उनकी मेहमानी है और जो कुछ खुदा के हां है वो नेकुकारों के लिए बहुत अच्छा है।

लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल उससे उसका जोड़ा बनाया, फिर उन दोनों से कसरत से मर्द औरत पैदा करके रूए जमीन पर फैला दिए, और खुदा से जिसके नाम को तुम अपनी हाजत बरारी का जरिया बनाते हो डरो, और कतई मौद्दत अरहाम से बचो, कुछ शक नहीं कि खुदा तुम्हें देख रहा है।

نصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد

और जो माल तुम्हारी औरतें छोड़ मरें, अगर उनके औलाद न हो तो उसमें निस्फ हिस्सा तुम्हारा, और अगर औलाद हो तो तरके में तुम्हारा हिस्सा चौथाई। लेकिन ये तकसीम वसीयत की तामील के बाद जो उन्होंने की हो, या कर्ज के अदा होने के बाद जो उनके जिम्मे हो, की जाएगी। और जो माल तुम मर्द छोड़ मरो, अगर तुम्हारे औलाद न हो तो तुम्हारी औरतों का उसमें चौथा हिस्सा, और अगर औलाद हो तो उनका आठवां हिस्सा। ये हिस्से तुम्हारी वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो और अदाए कर्ज के बाद तकसीम किए जाएंगे। और अगर ऐसे मर्द या औरत की मीरास हो जिसके न बाप हो न बेटा, मगर उसके भाई या बहन हो, तो उनमें से हर एक का छठा हिस्सा, और अगर एक से ज्यादा हो तो सब एक तिहाई में शरीक होंगे। ये हिस्से भी बाद अदाए वसीयत व कर्ज, बशर्ते कि उनसे मैयत ने किसी का नुकसान न किया हो, तकसीम किए जाएंगे। ये खुदा का फरमान है, और खुदा निहायत इल्म वाला और निहायत हिल्म वाला है।

मुसलमानों, तुम्हारी औरतों में जो बदकारी का इर्तकाब कर बैठे उन पर अपने लोगों में से चार शख्सों की शहादत लो। अगर वो उनकी बदकारी की गवाही दें तो उन औरतों को घरों में बंद रखो यहां तक कि मौत उनका काम तमाम कर दे या खुदा उनके लिए कोई और सबील पैदा करे।

और जो दो मर्द तुम में से बदकारी करें तो उनको ईजा दो, फिर अगर वो तौबा कर लें और नेकुकार हो जाएं तो उनका पीछा छोड़ दो, बेशक खुदा तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है।

और अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करना चाहो और पहली औरत को बहुत सा माल दे चुके हो तो उसमें से कुछ मत लेना, भला तुम नाजायज तौर पर और सरीह जुल्म से अपना माल उससे वापस लोगे।

और जिन औरतों से तुम्हारे बाप ने निकाह किया हो उनसे निकाह न करना, मगर जाहिलियत में जो हो चुका सो हो चुका। ये निहायत बेहयाई और खुदा की नाखुशी की बात थी और बहुत बुरा दस्तूर था।

0: तुम पर तुम्हारी माएं और बेटियां और बहनें और फूफियां और खालाएं और भतीजियां और भांजियां और वो माएं जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो और रजाई बहनें और सासें हराम कर दी गई हैं और जिन औरतों से तुम मुबाशिरत कर चुके हो उनकी लड़कियां जिन्हें तुम परवरिश करते हो वो भी तुम पर हराम हैं। हां, अगर उनके साथ तुमने मुबाशिरत न की हो तो उनकी लड़कियों के साथ निकाह कर लेने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और तुम्हारे सुलभी बेटों की औरतें भी और दो बहनों का इकट्ठा करना भी हराम है, मगर जो हो चुका सो हो चुका, बेशक खुदा बख्शने वाला और रहम वाला है।
1: आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हजरात, प्रोग्राम हयात तय्यबा की 14वीं नशस्त के साथ कासिम भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। सामईन, पिछली नशस्त में हम सहाबा कराम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम की मोहब्बत का तज़किरा फरमा रहे थे। आज हम इसी सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। इस मोहब्बत और वफादारी और जान निसारी और जान सुपारी का नतीजा ये था कि सहाबा कराम को ये गवारा ना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम के नाखून में खराश तक आ जाए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम के पाँव में कांटा ही चुभ जाए, खा इसके लिए इनकी गर्दने ही क्यों ना काट दी जाए। एक रोज अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुरी तरह कुचल दिया गया और इन्हें सख्त मार मारी गई। उतबा बिन रबिया इनके करीब आकर इन्हें दो पेवंद लगे हुए जूतों से मारने लगा, चेहरे को खसूसियत से निशाना बनाया, फिर पेट पर चढ़ गया। कैफियत ये थी कि चेहरा और नाक का पता नहीं चल रहा था। फिर इनके कबीले बनू तैम के लोग इन्हें एक कपड़े में लपेट कर घर ले गए। इन्हें यकीन था कि अब ये जिंदा ना बचेंगे, लेकिन दिन के खात्मे के करीब इनकी जुबान खुल गई और जुबान खुली तो ये बोले कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम का क्या हुआ। इस पर बनू तैम ने इन्हें सख्त सुस्त कहा, मलामत की और इनकी माँ उमुल खैर से ये कहकर उठ खड़े हुए कि इन्हें कुछ खिला पिला देना। जब वो तन्हा रह गए तो इन्होंने अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से खाने पीने के लिए इसरार किया, लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु यही कहते रहे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम का क्या हुआ। आखिरकार उमुल खैर ने कहा, मुझे तुम्हारे साथी का हाल मालूम नहीं। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, उम्मे जमील बिनते खताब के पास जाओ और इससे दरियाफ्त करो। वो उम्मे जमील के पास गई और बोली, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु तुमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम के बारे में दरियाफ्त कर रहे हैं। उम्मे जमील ने कहा, मैं ना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को जानती हूँ ना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम को। अलबत्ता अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे साजादे के पास चल सकती हूँ। उमुल खैर ने कहा, बेहतर है। इसके बाद उम्मे जमील इनके हमरा आई, देखा तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई खस्ता हाल पड़े थे। फिर करीब हुई तो चीख पड़ी और कहने लगी, जिस कौम ने आपकी ये दुर्गत बनाई है वो यकीनन बदकमाश और काफिर कौम है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आपका बदला इनसे लेकर रहेगा। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम का क्या हुआ। इन्होंने कहा, आपकी माँ सुन रही हैं। कहा, कोई बात नहीं, बोले आप सही सालिम हैं। पूछा, कहाँ हैं। कहा, इब्ने अरकम के घर में हैं। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अच्छा तो फिर अल्लाह के लिए मुझ पर अहद है कि मैं ना कोई खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाऊं। इसके बाद उमुल खैर और उम्मे जमील रुकी रही। जब आमदोरफ्त बंद हो गई और सन्नाटा छा गया तो ये दोनों अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर निकली। वो इन पर टेक लगाए हुए थे और इस तरह इन्होंने अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा दिया। मोहब्बत और जान सिपारी के कुछ और भी नादर वाकयात हम अपनी नशिस्त का हिस्सा बनाएंगे, खसूसन जंग अहद के वाकयात और हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु के हालात के ज़मन में। एहसास जिम्मेदारी, सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु जानते थे कि ये मुश्त खाक जिसे इंसान कहा जाता है इस पर कितनी भारी भरकम और जबरदस्त जिम्मेदारियां हैं और ये कि इन जिम्मेदारियों से किसी सूरत में गुरेज और पहलू तही नहीं की जा सकती, क्योंकि इस गुरेज के जो नताइज होंगे वो मौजूदा जुल्म और सितम से ज्यादा खौफनाक और हलाकत आफरी होंगे और इस गुरेज के बाद खुद इनको और सारी इंसानियत को जो खसारा लाहक होगा वो इस कदर शदीद होगा कि इस जिम्मेदारी के नतीजे में पेश आने वाली मुश्किलात इस खसारे के मुकाबले कोई हैसियत नहीं रखती। आखिरत पर ईमान, जो मस्कूरा एहसास जिम्मेदारी की तकवीत का बायस था, सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हु इस बात पर गैर मुतजलजल यकीन रखते थे कि इन्हें रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होना है। फिर इनके छोटे बड़े और मामूली और गैर मामूली हर तरह के अमाल का हिसाब लिया जाएगा اس کے بعد یا تو نعمتوں بھری دائمی جنت ہوگی یا عذاب سے بھڑکتی ہوئی جہنم۔ اس یقین کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی امید کی حالت میں گزارتے تھے، یعنی اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتے تھے، اور اس کے عذاب کا خوف بھی اور ان کی کیفیت وہی رہتی تھی جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جو کچھ کرتے ہیں دل کے اس خوف کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ انہیں اس کا بھی یقین تھا کہ دنیا اپنی ساری نعمتوں اور مصیبتوں سمیت آخرت کے مقابل مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں، اور یہ یقین اتنا پختہ تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری مشکلات، مشقتیں اور تلخیاں ہیچ تھی۔ اس لیے وہ ان مشکلات اور تلخیوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ انہی پرخطر مشکل ترین اور تیرا و تار حالات میں ایسی صورتیں اور آیتیں بھی نازل ہو رہی تھی جن میں بڑے ٹھوس اور پرکشش انداز سے اسلام کے بنیادی اصولوں پر دلائل و براہین قائم کیے گئے تھے، اور اس وقت اسلام کی دعوت انہی اصولوں کی گردش کر رہی تھی۔ ان آیتوں میں اہل اسلام کو ایسے بنیادی امور بتلائے جا رہے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کے سب سے باعزمت اور پر رونق معاشرے یعنی اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل مقدر کر رکھی تھی۔ نیز ان آیات میں مسلمانوں کے جذبات و احساسات کو پامردی و ثابت قدمی پر ابھارا جا رہا تھا، ان کے لیے مثالیں دی جا رہی تھی اور اس کی حکمتیں بیان کی جا رہی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ سختیوں اور بدحالیوں سے دوچار ہوئے اور انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کی آزمائش کی، لہٰذا ان کے بارے میں بھی اللہ یہ ضرور معلوم کرے گا کہ کن لوگوں نے سچ کہا، اور یہ بھی ضرور معلوم کرے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: सामईन, वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद।
2: मंदरजा ज़ेल आयात के पहलू ब पहलू ऐसी आयात का नज़ूल भी हो रहा था जिनमें कफार और मामज़ीन के एतराज के दंदान शिकन जवाब दिए गए थे। इनके लिए कोई हीला बाकी नहीं छोड़ा गया था और इन्हें बड़े वाजे और दो टोक अल्फाज में बतला दिया गया था कि अगर वो अपनी गुमराही और अनाथ पर अड़े रहे तो इसके नताइज किस कदर संगीन होंगे। इसकी दलील में गुज़िश्ता कौमों के ऐसे वाकयात और तारीखी शवाहिद पेश किए गए थे जिनसे वाज़े होता था कि अल्लाह की सुन्नत अपने औलिया और आदा के बारे में क्या है। फिर इस डरावे के पहलू ब पहलू लुत्फ व करम की बातें भी कही जा रही थी और अफहाम व तफहीम और इरशाद व रहनुमाई का हक भी अदा किया जा रहा था ताकि बाज आने वाले अपनी खुली गुमराही से बाज आ सकें। दर हकीकत कुरान मुसलमानों को एक दूसरी ही दुनिया की सैर कराता था और इन्हें कायनात के मुशाहिद, रबूबियत के जमाल, अलवियत के कमाल, रहमत और राफ्त के आसार और लुत्फ और रजा के ऐसे ऐसे जलवे दिखाता था कि इनके जज्बो शौक के आगे कोई रुकावट बरकरार ही न रह सकती थी। फिर इन्हीं आयात की तह में मुसलमानों से ऐसे ऐसे खताब भी होते थे जिनमें परवरदिगार की तरफ से रहमत और रिजवान और दायमी नेमतों से भरी हुई जन्नत की बिशारत होती थी और जालिम और सरकश दुश्मनों और काफिरों के इन हालात की तस्वीर कशी होती थी कि वो रब्बुल आलमीन की अदालत में फैसले के लिए खड़े किए जाएंगे, इनकी भलाइयां और नेकियां जब्त कर ली जाएंगी और इन्हें चेहरों के बल घसीट कर ये कहते हुए जहन्नम में फेंक दिया जाएगा कि लो जहन्नम का लुत्फ उठाओ। कामयाबी की बिशारतें। इन सारी बातों के अलावा मुसलमानों को अपनी मजलूमियत के पहले ही दिन से बल्कि इसके पहले भी मालूम था कि इस्लाम कबूल करने के मानी ये नहीं है कि दायमी मसाइब और हलाकत खेजियां मोल ले ली गई हैं बल्कि इस्लामी दावत रोज़े अव्वल से जाहिलियत, जुहला और इसके जालिमाना निज़ाम के खात्मे के अजाइम रखती है और इस दावत का एक अहम निशाना ये भी है कि वो रूए ज़मीन पर अपना असरो नफूज फैलाए और दुनिया के सियासी मौकफ पर इस तरह गालिब आ जाए कि इंसानी जमीयत और अक़वाम आलम को अल्लाह की मर्जी की तरफ ले जा सके और इन्हें बंदों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी में दाखिल कर सकें। कुरान मजीद में ये बिशारतें कभी इशारतन कभी सराहतन नाजिल होती थी। चुनाचे एक तरफ हालात ये थे कि मुसलमानों पर पूरी रूए ज़मीन अपनी सारी वसतों के बावजूद तंग बनी हुई थी और ऐसा लगता था कि अब वो पनप न सकेंगे बल्कि इनका मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा। मगर दूसरी तरफ इन्हीं हौसला शिकन हालात में ऐसी आयात का नजूल भी होता रहता था जिनमें पिछले अंबिया के वाकयात और इनकी कौम की तकजीब व कुफर की तफसीलात मजकूर होती थी और इन आयात में इनका जो नक्शा खींचा जाता था वो बईना वही होता था जो मक्के के मुसलमानों और काफिरों के माबैन दरपेश था। इसके बाद ये भी बताया जाता था कि इन हालात के नतीजे में किस तरह काफिरों और जालिमों को हलाक किया गया और अल्लाह के नेक बंदों को रूए ज़मीन का वारिस बनाया गया। इस तरह इन आयात में वाज़े इशारा होता था कि आगे चलकर अहले मक्का नाकाम और नामुराद रहेंगे और मुसलमान और इनकी इस्लामी दावत कामयाबी से हमकिनार होगी। फिर इन्हीं हालात व अयाम में बाज़ ऐसी भी आयतें नाजिल हो जाती थी जिनमें सराहत के साथ अहले ईमान के गलबे की बशारत मौजूद होती थी। मसलन अल्लाह ताला का इरशाद है, अपने फरिश्तादा बंदों के लिए हमारा पहले ही ये फैसला हो चुका है कि इनकी जरूर मदद की जाएगी और यकीनन हमारा ही लश्कर गालिब रहेगा। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वक्त तक के लिए तुम इनसे रुख फेर लो और इन्हें देखते रहो, अनकरीब ये खुद भी देख लेंगे क्या ये हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं। तो जब वो इनके सहन में उतर पड़ेगा तो डराएंगे, लोगों की सुबह बुरी हो जाएगी। एक और आयत में इरशाद है, अनकरीब इस जमीयत को शिकस्त दे दी जाएगी और ये लोग पीठ फेर कर भागेंगे। एक और आयत में इरशाद है, ये जुत्थों में से एक मामूली सा जुत्था है जिसे यही शिकस्त दे दी जाएगी। मुहाजरीन हबशा के बारे में इरशाद हुआ, जिन लोगों ने मजलूमियत के बाद अल्लाह की राह में हिजरत की, हम इन्हें यकीनन दुनिया में बेहतरीन ठिकाना अता करेंगे और आखिरत का अजर बहुत ही बड़ा है अगर लोग जान सकें। इसी तरह कुफार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया पूछा तो जवाब में ये आयत नाजिल हुई। یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی اہل مکہ جو آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھ رہے ہیں، یہ خود بھی اسی طرح ناکام ہوں گے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے، اور ان کی سپر اندازی کا وہی حال ہوگا جو ان کے بھائیوں کا ہوا تھا۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ ظالم کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا، کفار نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ اس پر ان کے رب نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے، یہ وعدہ ہے اس شخص کے لیے جو میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ اسی طرح جس وقت فارس اور روم میں جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور کفار چاہتے تھے کہ فارسی غالب آ جائیں کیونکہ فارسی مشرک تھے، اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومی غالب آ جائیں کیونکہ رومی بہرحال اللہ پر، پیغمبروں پر، وحی پر، آسمانی کتابوں پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے لیے دعوے دار تھے، لیکن غلبہ فارسیوں کو حاصل ہوتا جا رہا تھا۔ تو اس وقت اللہ نے یہ خوشخبری نازل فرمائی کہ چند برس بعد رومی غالب آ جائیں گے، لیکن اسی ایک بشارت پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس زمن میں یہ بشارت بھی نازل فرمائی کہ رومیوں کے غلبے کے وقت اللہ تعالی مومنین کی بھی خاص مدد فرمائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، یعنی اس دن اہل ایمان بھی اللہ کی ایک خاص مدد سے خوش ہو جائیں گے، اور آگے چل کر اللہ کی یہ مدد جنگ بدر کے اندر حاصل ہونے والی عظیم کامیابی اور فتح کی شکل میں نازل ہوئی۔ قرآن کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً اس طرح کی خوشخبریاں سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ موسم حج میں آپ کا اوقاز محبنہ اور ذوالجواز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ رسالت کے لیے تشریف لے جاتے تو صرف جنت ہی کی بشارت نہیں دیتے تھے بلکہ دو ٹوک لفظوں میں اس کا بھی اعلان فرماتے تھے، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب رہو گے اور اس کی بدولت عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور اس کی وجہ سے عجم بھی تمہارے زیر نگیں آ جائیں گے، پھر جب تم وفات پاؤ گے تو جنت کے اندر بادشاہ رہو گے۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: FM 92.6.
1: Number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: सूफी सिंग्स हू दैट विच इज दैट विच वॉज दैट विच विल बी
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
3: ایک نیا انداز ایک نئی سوچ एक नई पहचान
4: एक नई लगन
3: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
4: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से
3: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
4: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन
3: जब मिलती है लगन
4: मेहनत
3: कामयाबी और खुलूस
4: तो बनती है
3: यूसीपी की दुनिया
4: आप सुन रहे हैं FM 92.6
3: सुनते रहिए
5: अस्सलाम वालेकुम दिस इज राफिया मुस्तफी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर आज हमारे साथ FM 92.6 पे मिस सारा लियाकत जनरल मैनेजर ऑफ टुगेदर कंपनी मौजूद हैं टुगेदर इज अ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर सो हम इसी हवाले से आज इनके साथ एक डिस्कशन करेंगे कि अब तक का हमारा टुगेदर के साथ कैसा सिनेरियो रहा है स्टूडेंट्स अब तक जितने भी इंटर्नशिप पे गए हैं उन्होंने किस तरीके से अपनी वर्किंग्स को वहां पर एग्जीक्यूट किया है सो इन डिटेल हम इनके साथ डिस्कशन करते हैं अस्सलाम वालेकुम मिस सारा क्या हाल चाल है आपके ठीक है
6: वालेकुम सलाम राफिया मैं ठीक हूँ आप कैसी हैं
5: अल्हम्दुलिल्लाह
6: थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर प्लेयर टू बी हियर पार्ट ऑफ FM 92.6 वेल जैसा कि आपने बताया कि टुगेदर और फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर का MOU साइन हुआ था 2 years ago और हमारे CEO और फादर अशरफ और फहमीदा सुल्ताना के साथ बहुत अच्छी सिटिंग हुई जहाँ पे डिफरेंट थॉट्स हमने शेयर किए थे एंड बींग द एलुमनाई ऑफ UCP मैं अपने यूनिवर्सिटी के लिए कुछ सर्व करना चाहती थी और मुझे बहुत अच्छे लोग यहाँ पे मिल गए जो कि नुहेज एंड फातिमा हैं जिन्होंने मुझे कोलैबोरेट करवा दिया अपने डिपार्टमेंट के साथ और हमें बहुत मौका मिला यहाँ के स्टूडेंट्स को इनवाइट करने का इंटर्नशिप प्लान्स वगैरह उनके लिए शेयर करने का और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज शेयर करने का सो आज उसको हमें अपनी इस FM के थ्रू बताने का भी मौका मिला है सो आई एम थैंकफुल फॉर नुहेज एंड फातिमा कि उन्होंने आज इनवाइट किया हमें
5: ठीक है सो मिस सारा एज यू जस्ट सेड के यू आर द इल्यूमिनाई ऑफ UCP सो हाउ डिड यू रिलेट टू द स्टूडेंट्स जो आपके पास आए डेफिनेटली एक आई थिंक एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा होगा सो आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट दैट एक्सपीरियंस अब तक जितने आपके पास स्टूडेंट्स आए लाइक बैक इन 2 years राइट सो कैसा रहा काम और स्टूडेंट्स के हवाले से थोड़ा सा बताएं कैसी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही टुगेदर ने उनके लिए कैसे टास्क इनिशिएटिव लिया उसके ऊपर और क्या क्या चीजें प्लान आउट की
6: ठीक अच्छा राफी ऐसा है कि मुझे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई रियली वांट टू सर्व टू द स्टूडेंट्स ऑफ UCP जैसा UCP ने मुझे ग्रूम किया बनाया यहाँ तक पहुंचाया मैं चाहती थी मैं वहां के स्टूडेंट्स को भी कुछ ना कुछ एक अर्ज थी शुरू से फ्रॉम बीइंग द माय अराउंड 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन HR एंड नाउ एज अ GM ऑफ अ कंपनी मुझे एक अर्ज थी कि मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ करूँ सो मुझे अच्छे लोग भी मिल गए ये एक लकीली एक होती है एक चीज के हमें वो चीज एड ऑन हो जाए कि हमारे जो कोलैबोरेशन हुई तो बहुत से स्टूडेंट्स आए हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के भी और स्पेशली लैंग्वेज और लिटरेचर के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स तो बहुत कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स थे बहुत उनमें स्पार्क था बहुत वो सीखना चाहते थे उनमें भी एक अर्ज थी मुझे अपने स्टूडेंट के स्टूडेंटशिप का जमाना याद आ गया जब मेरे में भी वो अर्ज थी सीखने की और मैंने भी अपनी इंटर्नशिप्स की थी बहुत डिफरेंट जगहों पे सो पीपल वर ब्रिलियंट हियर उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लेके काम किया हमने उनको डिफरेंट टास्किंग दी बहुत कुछ है हमारे डिपार्टमेंट टुगेदर के डिपार्टमेंट में जो कि डिपार्टमेंट ऑफ क्रिएटिविटी है डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क है बहुत चीजें हैं हमारे पास उनको सिखाने के लिए सो ना सिर्फ राइटिंग है क्रिएटिव राइटिंग है कॉन्टेंट राइटिंग है, बट यस लेटर राइटिंग है, न्यूज लेटर राइटिंग है, ई मेल मार्केटिंग है, उसके बाद कॉर्पोरेट ई मेल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया कॉन्टेंट है, उसके बाद कॉर्पोरेट लेटर्स राइटिंग है, कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट कैसे ई मेल्स का आपस में क्वेश्चन करते हैं, आंसर करते हैं, उस प्रॉपर वो सारा हमने उनको गाइड किया. ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर का जो सिलेबस है वो एक बुकेश थिंग है, जहाँ वहाँ पे उनको एक्सप्लोर करने का जो मौका मिला वो था कि रियलिटी में कौन कौन से काम होते हैं इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. एंड लकीली द स्टूडेंट्स वर लाइक उनके लिए प्लेयर था कि दिस डिपार्टमेंट वाज ऑल सुपरवाइज्ड बाय और सीईओ और फातिह अशरफ. उन्होंने डायरेक्टली सीईओ के साथ काम किया और सीईओ ने उनको बहुत गाइड किया बिकॉज डॉक्टर फहमीदा सुल्ताना के स्टूडेंट्स आए थे, उनके डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स आए थे और आई एम हैप्पी कि स्टूडेंट्स ने बहुत मतलब कि लिया पार्ट लिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एक स्पार्क शो किया दैट यस दे वर द स्टूडेंट्स ऑफ यूसीपी.
7: ठीक है. अच्छा मैं ये पूछना चाहूंगी कि इज देयर एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर द इंडक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, या जितने भी स्टूडेंट्स आपको रिकमेंड किए जा रहे हैं, या वो अपना एक क्राइटेरिया
6: सेट नहीं होता. हमारी टास्किंग सेट होती है, हमारी कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ना टास्किंग सेट होती है. ऑब्वियसली जो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है उसको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं,
7: ठीक है,
6: उसके कैलिबर के अकॉर्डिंगली.
7: ओके.
6: ऑब्वियसली इंटर्नशिप,
7: एंड हाउ डू यू डिफाइन दैट कैलिबर के क्या स्टूडेंट का है, डू यू टेक एनी टेस्ट या कुछ इस तरीके से?
6: डेफिनेटली डेफिनेटली हमारे अपने भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हायरिंग भी होती है ना, वो हम प्रॉपर टेस्ट लेते हैं, क्रिएटिव टेस्ट लेते हैं.
7: ओके. एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछ रही हूँ बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं हर एक एप्टीट्यूड लेवल होता है, राइट? सो हमारे लिए भी ये जाना जरूरी है ताकि हम डिपार्टमेंट्स में अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे स्टूडेंट्स अब तक आफ्टर देयर ग्रेजुएशन और इन द मिड ऑफ देयर ग्रेजुएशन, वट एवर द लेवल दे आर एट, वो किस लेवल पे स्टैंड आउट कर रहे हैं. सो इस लिहाज से डू यू टेक एनी टेस्ट?
6: हम टेस्ट लेते हैं, हमारा प्रॉपर एक परफॉर्मा होता है, हमने एक क्राइटेरिया सेट किया होता है, वो डेली वीकली मंथली बेसिस पे सेट होकर डिपार्टमेंट को सेंड किया जाता है आफ्टर कम्प्लीटिंग द इंटर्नशिप्स.
7: दैट्स ग्रेट.
6: सो दैट द टीचर्स एंड द फैकल्टी नोज जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स वहाँ पे बखवाए हैं हमारे पास, स्पेशली नुहेज एंड फातिमा को, वो फॉर्म्स जाते हैं. हमारे एचआर डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, वो सारे रिपोर्टिंग करके वो सारी फाइलिंग करके वो उनको सेंड करते हैं सो दैट दे वुड नो कि सिर्फ बुकिश वर्ल्ड में ही स्टूडेंट्स अपना वो सारा शो अप कर रहे हैं, अपने क्रिएटिविटी और अपना वो सारा स्पार्क, या कॉर्पोरेट में जाके भी उन्होंने वो शो अप किया है. सो यस उन्होंने बहुत सीखने का, इवन स्टूडेंट्स हैव एक्सटेंडेड देयर इंटर्नशिप, उनको इतना मजा आया यहाँ पे कि उन्होंने 4 weeks की इंटर्नशिप्स को एक्सटेंड करवा के 6 weeks, 8 weeks तक लेके गए. सो इट्स अबाउट इट ऑल.
7: बहुत अच्छा लगा अब तक आपसे बात करके मिस सारा, अभी किस तरह से स्टूडेंट्स आए और काफी हद तक क्लैरिटी मिल गई. इसी के साथ अभी हम एक छोटी सी ब्रेक पर चलेंगे और देन वी विल कंटिन्यू फर्दर आवर डिस्कशंस. स्टे ट्यून्ड टू FM 92.6.

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: जी वेलकम बैक ऑन FM 92.6। हमारे साथ है मिस सारा, जनरल मैनेजर एट टुगेदर कंपनी, और बहुत मजे की गपशप लग रही है रिगार्डिंग स्टूडेंट्स, देयर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, और किस तरह से हम चीजों को फर्दर फ्यूचर के लिए देख सकते हैं। जी मिस सारा, अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि यूजुअली मैं लैंग्वेज डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर के हवाले से ही बात करूंगी कि व्हेन अ स्टूडेंट इज गेट डन विद द ग्रेजुएशन, राइट, अब देर इज़ अ हरी टू गेट जॉब्स और डेफिनेटली दे लुक अप फॉर द अपॉर्चुनिटीज। सो अगर मैं इसी डिपार्टमेंट के रेलिवेंस से बात करूँ, हाउ डू यू फाइंड के कॉरपोरेट लेवल पे एक स्टूडेंट जो इस डिपार्टमेंट का है उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, वो किस तरह के डिपार्टमेंट्स में इनरोल हो सकते हैं? बिकॉज यूजली जब इन स्टूडेंट से पूछा जाता है, आई डोंट नो, दैट्स अ टैबू, और वट इट इज इधर वो कहते हैं या तो हम टीचिंग कर सकते हैं या हम CCA या
2: CA। यहीं पर मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगी और इधर सबको सुनने वालों को भी बताना चाहूंगी कि स्पेशली जो इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं जो भी ग्रेजुएट होते हैं, यूजुअली यही समझा जाता है कि वो टीचिंग पे जाएंगे, वो सिर्फ एक टीचर ही बन सकते हैं या प्रोफेसर बन जाएंगे इन फ्यूचर, बट देयर आर अ स्कोप ऑफ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंग्लिश डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स, बिकॉज इंग्लिश ही एक कंटेंट क्रिएशन है। इसमें मैं अब आपको काउंट करवाऊंगी कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो ओपन अप होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। इट्स अ ह्यूज वर्ल्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन इन द सोशल मीडिया, इन द लाइक हमारी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, अभी पहले भी मैंने स्टेट किया था कि बहुत सी चीज़ें ओपन अप होती हैं, लाइक कंटेंट क्रिएशन है, सोशल मीडिया का सारा कंटेंट क्रिएट होता है, उसमें क्रिएटिविटी ऐड हो जाती है, उसमें डिजाइनिंग ऐड होती है, डिजाइनिंग में डिफरेंट कंटेंट आता है, वो सारा कुछ उनके अंडर आ जाता है। उसके अलावा एक प्रपोजल राइटिंग आती है, उसमें ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, उसमें व्हाट्सएप मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग, एक मार्केटिंग का एक और सेक्टर ओपन होता है जिसमें सारा कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंटेंट राइटर्स हैं। अब जैसे हमारे कॉर्पोरेट कंपनी में प्रॉपर डिपार्टमेंट है, क्रिएटिव डिपार्टमेंट, उसमें हमारे पास राइटर्स ही हैं जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के भी आते हैं और UCP के भी स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने प्रॉपर जॉब भी की है हमारे साथ, और उन्होंने एक न्यू चैप्टर ओपन किया कंटेंट का। लाइक हर किसी का अपना थॉट ऑफ माइंड है कंटेंट क्रिएट करने का, सो दिस इज नॉट ओनली अ फील्ड ऑफ टीचिंग के इंग्लिश पढ़ के तो आपने सिर्फ टीचर ही बनना है, देयर आर अदर स्कोप ऑफ वर्ल्ड, लाइक वो कंटेंट राइटर बहुत बहुत बड़े कंटेंट राइटर्स बन रहे हैं, और हमारे UCP के ही स्टूडेंट्स, इसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स, हमारे लिंक्डइन भरा हुआ है जो स्टूडेंट्स किस किस जगह पे पहुंचे हुए हैं, लाइक सिर्फ यहाँ पे नहीं, हमारे कॉर्पोरेट के साथ भी नहीं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमारे राइटर्स को इनवाइट करते हैं इधर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को, इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को। लास्ट ईयर ही हमारी कुछ स्टूडेंट्स लॉ फर्म में गए, उन्होंने प्रपोजल राइटिंग करवानी थी, कुछ मतलब प्रपोजल राइटिंग थी, कुछ उन्होंने स्टोरी राइटिंग करनी थी, उन्होंने अपने कुछ काम करवाने थे, वो स्टूडेंट्स लॉ डिपार्टमेंट तक भी गए। उसके अलावा और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को इन्वाइट करते हैं और प्रॉपर उनको ना सिर्फ इंटर्नशिप्स, और हम मैं अगर अपनी कंपनी की बात करूँ तो हमारे पास सिर्फ इंटर्नशिप्स नहीं, हमारे पास जॉब्स भी हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छे इंटर्नशिप्स भी करके गए हैं, और हमने उनके लिए उनको एक स्लॉट में, यस इट इज इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब एक्चुअली,
1: ठीक है,
2: सो जिन्होंने अच्छा काम किया है और CEO एंड और मैनेजर्स आर सेटिस्फाइड विद देम, उन्होंने उनको जॉब ऑफर्स भी की है,
1: ठीक है,
2: और पीपल आर डूइंग दैट और वी आर एंजॉयिंग देयर कंटेंट, उनकी क्रिएटिविटी, जो जो जो स्टेट ऑफ माइंड से वो एड ऑन करते हैं, जो पॉइंट्स बताते हैं, जो चीजें बता रहे होते हैं, तो पता चलता है कि वो UCP के इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं। एंड यस, फैकल्टी हैज डन अ अमेजिंग वर्क ऑन स्टूडेंट्स, उन्होंने एक काम किया, उन्होंने मेहनत की अपने स्टूडेंट्स को ग्रूम करने पे, उनको बताने पे, उनको पढ़ाने पे कि उन्होंने आगे कैसे करना है। यस, एक पार्ट होता है कि यूनिवर्सिटी का एक पार्ट अलग है और एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का पार्ट अलग है, जो कि एक मिस हो जाता है कहीं ना कहीं, आई थिंक फैकल्टी से या यूनिवर्सिटी से। सो उसके लिए हमारे पास लास्ट ईयर भी फैकल्टीज कॉन्वेंट स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 2 years बैक ओवरऑल यूनिवर्सिटीज ने फैकल्टी एंड कॉर्पोरेट लिंकेजेस को करवाने के लिए,
1: नेक्स्ट
3: پوائنٹ ادھر ہی لے کے آ رہی تھی کہ یہ تو چلے ایک اسٹوڈینٹ کے حوالے سے ہی بات ہوگی. اسٹوڈینٹس اپنے ٹیچرس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, رائٹ؟ اسٹوڈینٹس ہی ہیں جو ان کو پاتھ ویز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے ڈفرینٹ جگہوں پہ جانا ہے. سو ہاؤ ڈو یو شیپ دا مائنڈز آف دوز فیکلٹی ممبرس؟ ان کے لیے ایسی کیا اپرچونیٹیز ہیں ٹو گو ان ٹو دا انڈسٹری, وہ کارپوریٹس میں جائیں, وہ دیکھیں چیزیں کیسے چل رہی ہیں تاکہ وہ اپنے اسٹوڈینٹس کو اکارڈنگلی اپ ڈیٹ کر سکیں, چیزوں کا بتا سکیں.
2: امیزنگ انیشیٹو فرام دا یونیورسٹی ایز ویل کہ انہوں نے یہ فیکلٹیز کانوینٹ اسٹارٹ کروایا, اینڈ ہمارے پاس انگلش ڈپارٹمنٹ کے ہی کافی فیکلٹی ممبرس آئے اور انہوں نے کانوینٹ کی, اٹ واز لائک 5 to 10 days کانوینٹ سیشنز, اور میں بالکل ابھی آپ کو بتا رہی ہوں, اٹ واز کنڈکٹڈ بائی آر سی اور فادر شریف,
3: رائٹ؟
2: And it was the whole of, you know, 360 angle of switches of thoughts and everything like that. Because faculty bhi ek university, ek us world mein rehke, us tarike se unki, you know.
3: Thode break ki jaa jati.
2: Exactly. So, wo ek, unke saath mil ke, unko corporate explorer was a very important thing. I appreciate the initiative of the university. اینڈ وہاں پہ جب ہمارے سی ای او اور ان پی ایچ ڈی ڈاکٹرس کی آپس میں مطلب چینج آف تھاٹس وغیرہ ہوئے تو پتا چلا کہ کہاں کہاں پہ لیگ کرتی ہیں چیزیں. وی شیئرڈ آور ایکسپیرینس کہ آپ کے جب انٹرنشپ اسٹوڈینٹس آئے تو کہاں کہاں پہ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا آلریڈی, بٹ اسٹل بہت اس سے امپروومنٹ آئی. اینڈ وہ اسکانمنٹ یہاں پہ جب کمپلیٹ ہوئی اس میں کیا تھا کہ ہم نے بتایا کہ کارپوریٹ کے لیے آپ لوگ کیسے پریپیئر کریں اسٹوڈینٹس کو, کیا کیا چیزیں تھوڑی بہت ایڈ کر لیں. Obviously, PhD doctors جو یہاں کے فیکلٹی ممبرز ہیں اور دوسرے بھی جو فیکلٹی ممبرز ہیں ان سب کو پتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم نے اپنے کارپوریٹ پوائنٹ آف ویو سے ان کو گائڈ کیا, ان کو بتایا, اینڈ دیٹ فیو تھنگز ور دا آئی اوپنر فار دیم ٹو.
3: اوکے,
2: سو اس کے بعد جو فیکلٹیز نے وہاں پہ اسکانمنٹ کی ہمارے ساتھ ٹوگیدر کمپنی میں جب آئے, انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں آ کے واپس ریپرزینٹ کیا, دے انوائٹیڈ می ایز ویل, انہوں نے یہاں کے باقی فیکلٹی ممبرس کو بتایا کہ وٹ وی ہیو بین ٹاٹ ان ٹوگیدر کمپنی بائی دا سی ای او. سو یہ ایک امیزنگ تھنگ تھی, اور یہ آئی واز لائک جب میں اسٹوڈنٹ تھی اور میری دفعہ کی یہ چیزیں تب ایسا نہیں تھا, انٹرنشپ پلانز نہیں ہوتے تھے اتنے اتنے اسٹرکٹلی اور اتنے فالو نہیں کرتے تھے, مطلب ایک کرائٹیریا نہیں سیٹ تھا. اب تو انٹرنشپس وغیرہ کمپلسری ہیں, مینڈیٹری کر دی گئی ہیں. سو اب یہ جو فیکلٹیز کانوینٹ سے ایک ایڈ آن ہو گیا, نہ صرف اسٹوڈینٹس کی برین اسٹارمنگ ہوگی بٹ یس فیکلٹی کے لیے بھی ایک آئی اوپنر, ان کے لیے بھی ایک لرننگ کا موقع مل گیا.
3: دیٹس ونڈرفل مس سارا. یہاں پر ہی ابھی ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی, اینڈ دین پھر اس کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ آن FM 92.6.

0: की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट? सो कमिंग टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट जो कि एक कॉर्पोरेट का होता है, स्टूडेंट्स को यूजुअली नहीं पता होता कि जब वो अपना स्टेप इन करने जा रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट में, सो उनको किस तरह के चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं. सो मिस सारा, मेरा आपसे क्वेश्चन भी यही है कि एक स्टूडेंट जो अब कॉर्पोरेट में स्टेप इन करने जा रहा है, दे यूजुअली डोंट नो, यू नो, हर एक कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अपने एक सेटअप अपना किया होता है, दे कैन नॉट अबाइड बाय दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो आप स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करेंगी? बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट द जेन ज़ी एंड टुडे स्टूडेंट्स, दे आर मोर फ्लेक्सिबल्स इन देयर पर्सनैलिटीज.
1: एग्जैक्टली राफी, यहीं से मैं अगर अपना टाइम रिलेट करूँ तो वी वर सो ब्लैंक एट दैट टाइम ऑफ पॉइंट, कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था ना. जेन ज़ी आर वेरी इंटेलिजेंट एंड शार्प पीपल,
0: ट्रू,
1: बट स्टिल दे डोंट नो द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यू नो. इसीलिए ये कॉन्वेंट सेशंस हो, ये सारी इंटर्नशिप्स प्लान होती हैं, ताकि बिफोर स्टार्टिंग देयर जॉब वो इस सारे सिनेरियो से, सारे एनवायरनमेंट से गो थ्रू कर लें, सो दैट उनको जॉब में हर्डल्स ना हो. बट यस, व्हेन वी प्लान, वी एज अ कंपनी प्लान प्रॉपर इंटर्नशिप्स और कॉन्वेंट प्रोग्राम्स, तो हम भी प्रॉपर वर्किंग करते हैं, प्रॉपर प्लान बनाते हैं, सो डेट प्रॉपर उनके डे प्लान, वीक प्लान और मंथ प्लान होते हैं, सो डेट पीपल कम एंड डू वर्क एंड लर्न फ्रॉम अस, रादर देन कि वो सिर्फ फाइलिंग ना करें. बिकॉज एक मिथ है कि इंटर्नशिप में फाइलिंग होती है, फाइलिंग कंप्लीट करवा रहे हैं या पेपर कंप्लीट करवा रहे हैं. हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स, वो यही कहते हैं कि मिस हमें बस फाइलिंग बनानी है. मैंने कहती हूँ नहीं, दिस इज नॉट इट. हमने प्रॉपर प्लान उनके लिए बनाए होते हैं और उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, सो डेट दे गिव देयर फुल ऑफ देयर एनर्जी टू अस टू. व्हाई? बिकॉज दे विल लर्न फ्रॉम अस एंड दे विल यूज इट ना. आगे उन्होंने जॉब्स करनी है प्लान, या उन्होंने आगे अपना करियर परसू करना है, तो उसके लिए वो रेडी हो जाएं. सो पर्सनली ये एक आप समझें कि बीइंग एन एलुमनाई भी एक थिंग है कि मैं ज्यादा यहाँ के स्टूडेंट्स को, बाकी स्टूडेंट्स को भी, बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी डेफिनेटली टाइम अपना खुद इन्वेस्ट कर देती हूँ. मैं उन इंटर्नशिप मंथ्स में अपना टाइम भी थोड़ा प्लान करती हूँ कि आई विल गिव माय टाइम टू स्टूडेंट्स एज वेल टू. मैं सेशंस भी प्लान करती हूँ कि उनके साथ, सीईओ के साथ भी सेशंस, और हमारे सीनियर मैनेजर्स के साथ भी उनके सेशंस प्लान कर लेती हूँ, सो डेट ना सिर्फ वर्क बल्कि उनकी काउंसलिंग सेशंस और थॉट्स ऑफ माइंड और वो सब कुछ वो हमारे साथ शेयर करें कि व्हाई, व्हाट दे आर, दे वांट टू डू इन देयर फ्यूचर. उनको हम गाइड करें, उनको भी इज आउट बताएं कि अगर आपका ये प्लान है तो आपने उसको कैसे कंटिन्यू करना है, इस तरीके से उनको हम गाइड भी कर रहे होते हैं. बाकी इन्वायरमेंट की जो बात आप कर रही हैं, वी गिव आवर बेस्ट टू गिव देम मैक्सिमम, बट यस थोड़े से कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी रखते हैं ताकि पीपल गेट रेडी फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिकॉज इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि आपने बस मतलब यू नो इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस कहते हैं ना, कि उनको वो वाला रोजेस वाला इन्वायरमेंट भी नहीं दिया जाता. यस, एक मीडियम लेवल का इन्वायरमेंट देते हैं ताकि दे गेट प्रिपेयर फॉर देयर जॉब्स एज वेल. और जो कि यूनिवर्सिटी में, डेफिनेटली यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, वो वहां से निकल के बस एक जॉब में चले जाते हैं जिसमें वो फिर हर्डल्स फेस करते हैं. सो इसीलिए ये इंटर्नशिप प्लान्स और इस कॉन्वेंट प्लान्स और ये सब कुछ अब बनना शुरू हो गए हैं, सो डैट सब स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है. आई अप्रिशिएट द वर्क जो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए किए जाते हैं, यूसीपी के सब डिपार्टमेंट, स्पेशली इंग्लिश डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी है, नुहेज एंड फातिमा बहुत इस पर काम कर रहे होते हैं. हर वक्त मेरी उनसे मंथली मीटअप्स हो रहे होते हैं कि हमने आगे क्या करना है, प्लान डिस्कस हो रहे होते हैं कि वट वी कैन डू अदर देन द इंटर्नशिप्स एज वेल. सो हमने तो उनको ओपन इन्विटेशन दिए. हमारा कराची में भी रीजनल ऑफिस है, हेड ऑफिस लाहौर में है, तो हमने तो उनको कहा आप लोग जब जाना चाहें कराची ऑफिस भी हमारा विजिट कर सकते हैं. और फिर जो हमारे फर्दर क्लाइंट्स हैं टुगेदर के, जो फर्दर 9, 10, 15 तक क्लाइंट्स हैं आई थिंक, तो वो उनके साथ भी जो कोलेब्रेशन है, जो भी चीज़ें वगैरह होती हैं, वो हम अपॉर्चुनिटीज ओपन अप करते हैं, ना सिर्फ अपने ऑफिस में, डिफरेंट क्लाइंट्स के भी हम उनको ऑफर कर सकते हैं. सो वो हम पे प्लान कर लेते हैं हमने उनको कैसे आगे फर्दर करना होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट वट वी हैव डन येट. और हमारा यही फर्दर प्लान होते हैं कि इससे नेक्स्ट हम क्या करें, ओपन अप क्या करें. कुछ सेमिनार्स होते हैं या कुछ वर्कशॉप्स वगैरह हैं, तो उसमें भी हम इन्विटेशन दे देते हैं कि स्टूडेंट्स कम एंड लर्न फ्रॉम वट एक्चुअली द कॉर्पोरेट वर्कशॉप इज. एंड जो उन्होंने यूनिवर्सिटीज में एक वर्कशॉप से सेमिनार्स अटेंड किए हैं, तो वो एक डिफरेंस फील कर रहे होते हैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जेन ज़ी और यू नो जो हमारे जनरेशन के हैं, अब जो आ रहे हैं क्रीम जो आ रही है, और उनके लिए उनके मुताबिक चीजें हम प्रिपेयर करते हैं, सो डेट उनको स्टेप बाय स्टेप पिक करके उनको उस लेवल तक लेके जाएं.
0: सो इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइम स्लॉट और द ड्यूरेशन फॉर द इंटर्नशिप, और व्हेनेवर दे वांट टू जॉइन दे कैन कम?
1: अच्छा देखो, वी आर ओपन अप फॉर लाइक 12 मंथ्स अ ईयर.
0: ठीक है,
1: हम ओपन अप

0: बट यस स्टूडेंट्स अपने समर ब्रेक में ही मोस्टली आते हैं.
1: मोस्टली एग्जैक्टली
0: यस यस वो समर ब्रेक्स में आते हैं. बट यस आई हैव मेड अ स्लॉट इन एवरी डिपार्टमेंट फॉर होल ऑफ द ईयर सो डेट कोई भी अगर स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं तो हम ओपन अप रख लेते हैं. एंड यस कुछ फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे भी हमने दी है कि इफ दे वॉन्ट टू डू 4 weeks इंटर्नशिप्स और 8 weeks और 10 weeks ये भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हमने दी है. बट यस फॉर द टाइमिंग्स एंड फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको वो सब फॉलो करने होते हैं जो हमारे एम्प्लॉयज के हैं.
1: ओके
0: यस सारे रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस SOPs उन्होंने वो एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी उन्होंने उसी तरीके से फॉलो करना होते हैं.
1: एंड व्हाट अबाउट एनी the perk or benefit like in terms
0: yes,
1: of stipends do you give
0: the internships are stipend definitely so that unka you know traveling allowance nikal aaye.
1: That's great.
0: This is an to appreciate their work aur utna unka interest ko appreciate karne ke liye because wo bhi ek students ka group hai jo nahi karna chahta internship bas degree ki and they just stay at home and they you know party scene on hai. So ek wo bhi group hai students ka but yes ek wo bhi group hai jo aate hain kaam karte hain interest lete hain. तो यस उनको अप्रिशिएट करने के लिए इट्स यू नो टोकन ऑफ अप्रिसिएशन टाइप. सो इस तरीके से हमने एक स्टाइपेंड रखा हुआ है उनके लिए.
1: जी ये था हमारा अब तक का प्रोग्राम. थैंक यू सो मच मिस सारा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. आई थिंक स्टूडेंट्स को काफी हद तक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी चीजों के हवाले से. आई होप एंड आई विश के जो आप न्यू इनिशिएटिव्स की बात कर रही हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए नोट के साथ हम जरूर बैठें और इन चीजों को डिस्कस करें स्टूडेंट्स तक अपने मैसेज को कन्वे करें फैकल्टीज को अकॉर्डिंगली बताएं ताकि ना सिर्फ स्टूडेंट्स को ये पता हो कि चीजें बाहर किस तरह से चल रही हैं. दे मेक श्योर टू गेट देमसेल्व्स प्रिपेयर एंड रेडी टू स्टेप इनटू द न्यू वर्ल्ड ऑफ कॉर्पोरेट.
0: थैंक यू सो मच
1: वंस अगेन.
0: प्लेजर टू बी हियर.
1: थैंक यू. जी लिसनर्स सो आई होप कि आज का सेशन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. इसी तरह जैसे मैंने कहा मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ कुछ न्यू एजुकेशनल नोट्स के साथ. एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट के हाउ थिंग्स गो ऑन. और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए सुनते रहिए FM 92.6. अल्लाह हाफिज़.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

इस गजल की बंदिश भूप कल्याण में, जिसे कि भूपाली कहते हैं, और उसमें फिर खूबसूरती जैसे अल्फाज, अगर कोई दूसरा भी सुर लगता तो मुनासिब जैसे वो लगा था।

अगर नहीं बाकी होगा तो मैं जो आगे बयान करने जा रहा हूँ इन दो लिंक्स में आपका यकीनन इश्तियाक उभरेगा कि वही वो कॉल हमें मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। सो बेजार मत होइएगा। वैसे भी यकीन कीजिए जब ये मेरा प्रोग्राम ऑन एयर जाएगा तो मैं दावा तो नहीं करता क्योंकि दावा सिर्फ रब की जात को जेब देता है, लेकिन मुझे यकीन है और मैंने ऐसी दास्तानें आपके लिए चुनी हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे जरूर पज़ीराई बख्शेंगे। जब आपकी फीडबैक आना शुरू होगी तो वो मेरे लिए हौसले का बायस होगी, और अगर आपने मुझे पज़ीराई बख्शी, मेरी इस कोशिश को आपने पसंद किया, तो यकीन कीजिए मैं ऐसी ऐसी और दास्तानें लेके आऊंगा लाहौर शहर की कि आप सुनते सुनते सो जाएंगे, थकेंगे कभी नहीं। लिहाजा मुझे आपसे ये इल्तिजा करनी है कि खुदारा जब ये प्रोग्राम ऑन एयर हो तो आप हर प्रोग्राम सुनने के बाद हम आपको अपना लिंक देंगे और मैं अपना भी आपको दूंगा, ईमेल दूंगा, जरूर बताइएगा अपनी कीमती आरा से, अपनी राय से, अपने मशवरों से जरूर नवाजिएगा, ताकि आइंदा कभी भी मैं आऊं तो अपने आप को बेहतर करके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो बात मैं ये कर रहा था, जब पैगाम अब वापस आया तो पहले जो हिस्सा था, पार्ट वन जो था छत के इश्क का, उसका तो ये था ना कि एक सफेद कागज चश्मा कर दिया जाता था, उस पे जली अरूफ में, मोटे मोटे अरूफ में पैगाम लिखा जाता था और फिर मिलने की जगह का तयन होता था। इसमें आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि असल में ये दोनों ऐसे उशाक थे, दोनों ऐसे चाहने वाले थे जो के दूर के रिश्तेदार भी थे, लेकिन ये आप समझें कि 50% इश्क मुकम्मल था, 50% मुकम्मल नहीं हुआ था। यानी क्या था कि चाहने वाले तो एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का इरादा रखते थे, उनका ये मुकम्मल ख्याल भी था, लेकिन क्या था कि दोनों घरों में इतनी पाबंदियां थी, इनके जो बुजुर्गान थे, इनके जो बड़े बूढ़े और बड़ी बूढ़िया थी, वो ऐसे सख्त थीं और सख्त थे कि वो अपनी मंशा को, अपनी मर्जी को अपनी औलाद पे ठोंसना लाजमी समझते थे। लिहाजा ये दोनों एक दूसरे को कबूतर के जरिए पैगाम भेज के मशवरे देते थे कि किस तरीके से वो अपने अपने घर वालों को, अपने अपने बुजुर्गों को राम कर सकें, राजी कर सकें, अमादा कर सकें कि खुदारा आप कोई गलत चीज मत सोचिएगा, किसी गलत ख्याल को अपने जेन में जगह मत दीजिएगा। हम एक दूसरे को चाहते हैं, बड़ी पाकीजगी से चाहते हैं। हम कभी नहीं मिले आज तक, ना हमारे मिलने का इरादा है, हम सिर्फ आपकी हाँ के मुंतजर हैं। अगर आपने हाँ कर दी तो हम दोनों इकट्ठी जिंदगी गुजारने के काबिल हो सकेंगे। लिहाजा पता ये चला कि कबूतर के पाँव में जो रुका बांधा जाता था डोरी के साथ, नथी करके भेजा जाता था, उसमें यही कीमती मशवरे होते थे और आगे से जवाब में उस मशवरे में कोई तब्दीली का इशारा किया जाता था, इधर से फिर जाता था। अच्छा, ये पतंगबाजी वाले इश्क से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसमें ये सिलसिला जो था ये बारहा होता था कि मैं आधे पौने घंटे में 5-6 दफा ये सिलसिला जारी रहता था। कबूतर जाता था, कबूतर आता था, कबूतर आता था, कबूतर जाता था, यानी दो छतों के दरमियान कबूतर जो था वो चक्कर लगाता रहता था, दौरे करता रहता था और पैगामात को एक छत से दूसरे छत तक पहुंचाता रहता था। लिहाजा ये तो तय हुआ कि ये तरीकाकार था, जदीद तरीकाकार था, मेरे लिए तो कम से कम जदीद तरीकाकार था। अगर मेरे दोस्त ने ना बताया होता तो मैं बड़ी शशोपंज में रहता कि ये क्या सिलसिला है। दूसरी छत जो खातून की थी, साहिबा की थी, हमारे घर से काफी दूर थी, फिर कबूतर जाके बैठता नजर आता था और वो खातून जो थी कबूतर को हाथ में लेते हुए नजर आती थी, वो भी जब सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा होता था। लिहाजा ये इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि आखिर अंजाम क्या हुआ इस कबूतरबाजी और कबूतरबाज के इश्क का और उस खातून का जो इसको रिसीव करती थी पैगाम को, और पैगाम को दोबारा कबूतर के पंजे के साथ बांध के वापस भेजती थी। कहीं मत जाइएगा, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: Hey, this is Fakhar Abbas and you are listening to FM 92.6 UCB ki duniya. UCB ki duniya.
1: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCB ki duniya.
2: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगाम मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज़ हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

फर्क पड़ता है जब कानून नाफिज करने वाला हर जवान, हर इदारा अपनी कौम को मनशियात से बचाता है और हर शहरी 1415 पे मुकम्मल राजदारी और जिम्मेदारी से मनशियात फरोशों की इत्तला देता है। फर्क पड़ता है हमारी हिम्मत से, हमारी कॉल से। 1415 मनशियात अब नहीं।

0: कंट्रोल, आवाज़ आ रही है? सच बोलूं, दिल भी थोड़ा कांप रहा है।
1: आवाज भी और धड़कन भी सन्नी हो गई।
0: The nets fly over and out.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Radio.

0: के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज़ हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP

अंदर लगी जंग चणु चुप चुपीता वेख के पई आखण लोग मलंग असा खुबे गम दे खोबड़े साडे लंबे हो गए केस पाता ने बाने सोच दे असा बुंदे रहंदे खेस साडे सर ते सूरज हाड़दा साडे अंदर सीत सिया बिन छाउण चीतर रुख दी साडे अंदर बांबड़ बार असा मच मचाया इश्क दा साडे लूसे आई कलू असा खुद नू भुले सावला सा हरदम जपया तू

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज़ हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगाम मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: मैं काम करके थक जाती हूँ।
1: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
2: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब इनका बचपन ना छीनें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इत्तला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर रابطہ करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: मैं काम करके थक जाती हूँ।
1: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
2: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब इनका बचपन ना छीनें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इत्तला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर रابطہ करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राफिया मुस्तफ़ी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज हमारे साथ FM 92.6 पे मिस सारा लियाकत, जनरल मैनेजर ऑफ टुगेदर कंपनी मौजूद हैं। टुगेदर इज़ अ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सो हम इसी हवाले से आज इनके साथ एक डिस्कशन करेंगे कि अब तक का हमारा टुगेदर के साथ कैसा सिनेरियो रहा है। स्टूडेंट्स अब तक जितने भी इंटर्नशिप पे गए हैं, उन्होंने किस तरीके से अपनी वर्किंग्स को वहाँ पर एग्जीक्यूट किया है। सो इन डिटेल हम इनके साथ डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस सारा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है।
3: वालेकुम सलाम राफिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह,
3: थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर, प्लेजर टू बी हियर पार्ट ऑफ FM 92.6। वेल, जैसा कि आपने बताया कि टुगेदर और फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर का MOU साइन हुआ था 2 years ago, और हमारे CEO और फादर अशरफ और फहमीदा सुल्ताना के साथ बहुत अच्छी सिटिंग हुई, जहाँ पे डिफरेंट थॉट्स हमने शेयर किए थे। एंड बीइंग द एलुमनाई ऑफ UCP, मैं अपने यूनिवर्सिटी के लिए कुछ सर्व करना चाहती थी, और मुझे बहुत अच्छे लोग यहाँ पे मिल गए, जो कि नुहेज एंड फातिमा हैं, जिन्होंने मुझे कोलैबोरेट करवा दिया अपने डिपार्टमेंट के साथ, और हमें बहुत मौका मिला यहाँ के स्टूडेंट्स को इनवाइट करने का, इंटर्नशिप प्लान्स वगैरह उनके लिए शेयर करने का, और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज शेयर करने का। सो आज उसको हमें अपनी इस FM के थ्रू बताने का भी मौका मिला है। सो आई एम थैंकफुल फॉर नुहेज एंड फातिमा कि उन्होंने आज इनवाइट किया हमें।
2: ठीक है। सो मिस सारा, एज यू जस्ट सेड कि यू आर द एलुमनाई ऑफ UCP, सो हाउ डिड यू रिलेट टू द स्टूडेंट्स जो आपके पास आए? डेफिनेटली एक आई थिंक एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा होगा, सो आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट दैट एक्सपीरियंस। अब तक जितने आपके पास स्टूडेंट्स आए, लाइक बैक इन 2 years, राइट? सो कैसा रहा काम, और स्टूडेंट्स के हवाले से थोड़ा सा बताएं कैसी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही, टुगेदर ने उनके लिए कैसे टास्क इनिशिएटिव लिया उसके ऊपर, और क्या क्या चीजें प्लान आउट की?
3: ठीक। अच्छा राफी, ऐसा है कि मुझे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई रियली वांट टू सर्व टू द स्टूडेंट्स ऑफ UCP, जैसा UCP ने मुझे ग्रूम किया, बनाया, यहाँ तक पहुंचाया, मैं चाहती थी मैं वहां के स्टूडेंट्स को भी कुछ ना कुछ, एक अर्ज थी शुरू से, फ्रॉम बीइंग द माय अराउंड 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन HR एंड नाउ एज अ GM ऑफ अ कंपनी, मुझे एक अर्ज थी कि मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ करूँ। सो मुझे अच्छे लोग भी मिल गए, ये एक लकीली एक होती है एक चीज के, हमें वो चीज एड ऑन हो जाए कि हमारे जो कोलैबोरेशन हुई, तो बहुत से स्टूडेंट्स आए हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के भी, और स्पेशली लैंग्वेज और लिटरेचर के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स, तो बहुत कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स थे, बहुत उनमें स्पार्क था, बहुत वो सीखना चाहते थे, उनमें भी एक अर्ज थी। मुझे अपने स्टूडेंट के स्टूडेंटशिप का जमाना याद आ गया, जब मेरे में भी वो अर्ज थी सीखने की, और मैंने भी अपनी इंटर्नशिप्स की थी बहुत डिफरेंट जगहों पे। सो पीपल वर ब्रिलियंट हियर, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लेके काम किया, हमने उनको डिफरेंट टास्किंग दी। बहुत कुछ है हमारे डिपार्टमेंट टुगेदर के डिपार्टमेंट में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ क्रिएटिविटी है, डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क है, बहुत चीज़ें हैं हमारे पास उनको सिखाने के लिए। सो ना सिर्फ राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, बट यस लेटर राइटिंग है, न्यूज़ लेटर राइटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, उसके बाद कॉर्पोरेट ईमेल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया कंटेंट है, उसके बाद कॉर्पोरेट लेटर्स राइटिंग है, कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट कैसे ईमेल्स का आपस में क्वेश्चन करते हैं, आंसर करते हैं, उस प्रॉपर वो सारा हमने उनको गाइड किया। ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर का जो सिलेबस है वो एक बुकिश थिंग है, जहाँ वहाँ पे उनको एक्सप्लोर करने का जो मौका मिला वो था कि रियलिटी में कौन कौन से काम होते हैं इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। एंड लकीली द स्टूडेंट्स वर लाइक, उनके लिए प्लेयर था कि दिस डिपार्टमेंट वाज ऑल सुपरवाइज्ड बाय आवर CEO और फातिमा अशरफ, उन्होंने डायरेक्टली CEO के साथ काम किया, और CEO ने उनको बहुत गाइड किया, बिकॉज फहमीदा सुल्ताना के थॉट होती है उसके, डॉक्टर फहमीदा सुल्ताना के स्टूडेंट्स आए थे, उनके डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स आए थे, और आई एम हैप्पी कि स्टूडेंट्स ने बहुत मतलब कि लिया, पार्ट लिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एक स्पार्क शो किया दैट यस दे वर द स्टूडेंट्स ऑफ यूसीपी.
2: ठीक है. अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगी कि इज देयर एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर द इंडक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, या जितने भी स्टूडेंट्स आपको रिकमेंड किए जा रहे हैं, या वो अपना एक
3: क्राइटेरिया सेट नहीं होता. हमारी टास्किंग सेट होती है, हमारी कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ना टास्किंग सेट होती है. ऑब्वियसली जो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है उसको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं,
2: ठीक है,
3: उसके कैलिबर के अकॉर्डिंगली.
2: ओके.
3: ऑब्वियसली इंटर्नशिप,
2: एंड हाउ डू यू डिफाइन दैट कैलिबर के क्या स्टूडेंट का है, डू यू टेक एनी टेस्ट या कुछ इस तरीके से?
3: डेफिनेटली हमारे अपने भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हायरिंग भी होती है ना, वो हम प्रॉपर टेस्ट लेते हैं, क्रिएटिव टेस्ट लेते हैं.
2: ओके. एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछ रही हूँ, बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं हर एक एप्टीट्यूड लेवल होता है, राइट? सो हमारे लिए भी ये जानना जरूरी है ताकि हम डिपार्टमेंट्स में अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे स्टूडेंट्स अब तक आफ्टर देयर ग्रेजुएशन और इन द मिड ऑफ देयर ग्रेजुएशन, वट एवर द लेवल दे आर एट, वो किस लेवल पे स्टैंड आउट कर रहे हैं. सो इस लिहाज से डू यू टेक एनी टेस्ट?
3: हम टेस्ट लेते हैं, हमारा प्रॉपर एक परफॉर्मा होता है, हमने एक क्राइटेरिया सेट किया होता है, वो डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे सेट होकर डिपार्टमेंट को सेंड किया जाता है आफ्टर कम्प्लीटिंग द इंटर्नशिप.
2: दैट्स ग्रेट.
3: सो डेट द टीचर्स एंड द फैकल्टी नोज, जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स वहाँ पे रखवाए हैं हमारे पास, स्पेशली नुहेज एंड फातिमा को, वो फॉर्म्स जाते हैं. हमारे एचआर डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, वो सारे रिपोर्टिंग करके, वो सारी फाइलिंग करके वो उनको सेंड करते हैं, सो डेट दे वुड नो कि सिर्फ बुकिश वर्ल्ड में ही स्टूडेंट्स अपना वो सारा शो अप कर रहे हैं, अपने क्रिएटिविटी और अपना वो सारा स्पार्क, या कॉर्पोरेट में जाके भी उन्होंने वो शो अप किया है. सो यस, उन्होंने बहुत सीखने का, इवन स्टूडेंट्स हैव एक्सटेंडेड देयर इंटर्नशिप, उनको इतना मजा आया यहाँ पे कि उन्होंने 4 weeks की इंटर्नशिप्स को एक्सटेंड करवा के 6 weeks, 8 weeks तक लेके गए. सो इट्स अबाउट इट ऑल.
2: बहुत अच्छा लगा अब तक आपसे बात करके मिस सारा. अभी किस तरह से स्टूडेंट्स आए और काफी हद तक क्लैरिटी मिल गई. इसी के साथ अभी हम एक छोटी सी ब्रेक पर चलेंगे और देन वी विल कंटिन्यू फर्दर आवर डिस्कशंस. स्टे ट्यून्ड टू FM 92.6.

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: जी वेलकम बैक ऑन FM 92.6। हमारे साथ है मिस सारा, जनरल मैनेजर एट टुगेदर कंपनी, और बहुत मजे की गपशप लग रही है रिगार्डिंग स्टूडेंट्स, देयर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, और किस तरह से हम चीजों को फर्दर फ्यूचर के लिए देख सकते हैं। जी मिस सारा, अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि यूजुअली मैं लैंग्वेज डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर के हवाले से ही बात करूंगी कि व्हेन अ स्टूडेंट इज गेट डन विद द ग्रेजुएशन, राइट, अब देर इज़ अ हरी टू गेट जॉब्स और डेफिनेटली दे लुक अप फॉर द अपॉर्चुनिटीज। सो अगर मैं इसी डिपार्टमेंट के रेलिवेंस से बात करूँ, हाउ डू यू फाइंड के कॉरपोरेट लेवल पे एक स्टूडेंट जो इस डिपार्टमेंट का है उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, वो किस तरह के डिपार्टमेंट्स में इनरोल हो सकते हैं? बिकॉज यूजली जब इन स्टूडेंट से पूछा जाता है, आई डोंट नो, दैट्स अ टैबू, और वट इट इज ईदर वो कहते हैं या तो हम टीचिंग कर सकते हैं या हम CCA या
2: CA। यहीं पर मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगी और इधर सबको सुनने वालों को भी बताना चाहूंगी कि स्पेशली जो इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, जो भी ग्रेजुएट होते हैं, यूजुअली यही समझा जाता है कि वो टीचिंग पे जाएंगे, वो सिर्फ एक टीचर ही बन सकते हैं या प्रोफेसर बन जाएंगे इन फ्यूचर, बट देयर आर अ स्कोप ऑफ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंग्लिश डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स, बिकॉज इंग्लिश ही एक यू नो कंटेंट क्रिएशन है। इसमें मैं आपको काउंट करवाऊंगी कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो ओपन अप होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। इट्स अ ह्यूज वर्ल्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन इन द सोशल मीडिया, इन द लाइक हमारी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, अभी पहले भी मैंने स्टेट किया था कि बहुत सी चीज़ें ओपन अप होती हैं, लाइक कंटेंट क्रिएशन है, सोशल मीडिया का सारा कंटेंट क्रिएट होता है, उसमें क्रिएटिविटी ऐड हो जाती है, उसमें डिजाइनिंग ऐड होती है, डिजाइनिंग में डिफरेंट कंटेंट आता है, वो सारा कुछ उनके अंडर आ जाता है। उसके अलावा एक प्रपोजल राइटिंग आती है, उसमें ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, उसमें व्हाट्सएप मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग, एक मार्केटिंग का एक और सेक्टर ओपन होता है जिसमें सारा कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंटेंट राइटर्स हैं। अब जैसे हमारे कॉर्पोरेट कंपनी में एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है, क्रिएटिव डिपार्टमेंट, उसमें हमारे पास डिफरेंट राइटर्स ही हैं जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के भी आते हैं और UCP के भी स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने प्रॉपर जॉब भी की है हमारे साथ, और उन्होंने एक न्यू चैप्टर ओपन किया कंटेंट का, लाइक हर किसी का अपना थॉट ऑफ माइंड है कंटेंट क्रिएट करने का। सो दिस इज नॉट ओनली अ फील्ड ऑफ टीचिंग कि इंग्लिश पढ़ के तो आपने सिर्फ टीचर ही बनना है, देयर आर अदर स्कोप ऑफ वर्ल्ड, लाइक वो कंटेंट राइटर बहुत बहुत बड़े कंटेंट राइटर्स बन रहे हैं, और हमारे UCP के ही स्टूडेंट्स, इसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स, हमारे लिंक्डइन भरा हुआ है जो स्टूडेंट्स किस किस जगह पे पहुंचे हुए हैं, लाइक सिर्फ यहाँ पे नहीं, हमारे कॉर्पोरेट के साथ भी नहीं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमारे राइटर्स को इनवाइट करते हैं इधर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को, इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को। लास्ट ईयर ही हमारी कुछ स्टूडेंट्स लॉ फर्म में गए, उन्होंने प्रपोजल राइटिंग करवानी थी, कुछ मतलब प्रपोजल राइटिंग थी, कुछ उन्होंने स्टोरी राइटिंग करनी थी, उन्होंने अपने कुछ काम करवाने थे, वो स्टूडेंट्स लॉ डिपार्टमेंट तक भी गए। उसके अलावा और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को इन्वाइट करते हैं और प्रॉपर उनको ना सिर्फ इंटर्नशिप्स, और हम मैं अगर अपनी कंपनी की बात करूँ तो हमारे पास सिर्फ इंटर्नशिप्स नहीं, हमारे पास जॉब्स भी हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छे इंटर्नशिप्स भी करके गए हैं, और हमने उनके लिए उनको एक स्लॉट में, यस इट इज इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब एक्चुअली,
1: ठीक है।
2: सो जिन्होंने अच्छा काम किया है और CEO एंड और मैनेजर्स आर सेटिस्फाइड विद देम, उन्होंने उनको जॉब ऑफर्स भी की है,
1: ठीक है,
2: और पीपल आर डूइंग दैट और वी आर इंजॉइंग देयर कंटेंट, उनकी क्रिएटिविटी, जो जो स्टेट ऑफ माइंड से वो एड ऑन करते हैं, जो पॉइंट्स बताते हैं, जो चीजें बता रहे होते हैं, तो पता चलता है कि वो UCP के इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं। एंड यस, फैकल्टी हैज डन अ अमेजिंग वर्क ऑन स्टूडेंट्स, उन्होंने एक काम किया, उन्होंने मेहनत की अपने स्टूडेंट्स को ग्रूम करने पे, उनको बताने पे, उनको पढ़ाने पे कि उन्होंने आगे कैसे करना है। यस, एक पार्ट होता है कि यू नो यूनिवर्सिटी का एक पार्ट अलग है और एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का पार्ट अलग है, जो एक मिस हो जाता है कहीं ना कहीं, आई थिंक फैकल्टी से या यूनिवर्सिटी से। सो उसके लिए हमारे पास लास्ट ईयर भी फैकल्टीज कॉन्वेंट स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 2 years back ओवरऑल यूनिवर्सिटीज ने फैकल्टी एंड कॉर्पोरेट लिंकेजेस को دلوانے کے لیے
1: میں نیکسٹ پوائنٹ ادھر ہی لے کے آ رہی تھی کہ یہ تو چلے ایک اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ہی بات ہوگی. اسٹوڈینٹس اپنے ٹیچرس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, رائٹ؟ اسٹوڈینٹس ہی ہیں جو ان کو پاتھ ویز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے ڈفرینٹ جگہوں پہ جانا ہے. سو ہاؤ ڈو یو شیپ دا مائنڈز آف دوز فیکلٹی ممبرس؟ ان کے لیے ایسی کیا اپرچونیٹیز ہیں ٹو گو ان ٹو دا انڈسٹری؟ وہ کارپوریٹس میں جائیں, وہ دیکھیں چیزیں کیسے چل رہی ہیں تاکہ وہ اپنے اسٹوڈینٹس کو اکارڈنگلی اپ ڈیٹ کر سکیں, چیزوں کا بتا سکیں.
2: امیزنگ انیشیٹو فرام دا یونیورسٹی ایز ویل کہ انہوں نے یہ فیکلٹیز کانوینٹ اسٹارٹ کروایا, اینڈ ہمارے پاس انگلش ڈپارٹمنٹ کے ہی کافی فیکلٹی ممبرز آئے اور انہوں نے کانوینٹ کی, اٹ واز لائک 5 to 10 days کانوینٹ سیشنز. اور
1: میں
2: بالکل ابھی آپ کو بتا رہی ہوں, اٹ واز کنڈکٹڈ بائی اور سی ای اور فادر شریف, and it was the whole of you know 360 angle of switches of thoughts and everything like that, because faculty bhi ek university ek us world mein reh ke us tarike se unki wo you know
1: thode break ki ja jati
2: hai bilkul. So wo ek unke sath mil ke unko corporate explore was a very important thing. I appreciate the initiative of the university. اینڈ وہاں پہ جب ہمارے سی ای او اور ان پی ایچ ڈی ڈاکٹرس کی آپس میں مطلب چینج آف تھاٹس وغیرہ ہوئے تو پتا چلا کہ کہاں کہاں پہ لیک کرتی ہیں چیزیں. وی شیئرڈ آور ایکسپیرینس کہ آپ کے جب انٹرنشپ اسٹوڈینٹس آئے تو کہاں کہاں پہ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا آلریڈی, بٹ اسٹل بہت اس سے امپروومنٹ آئی. اینڈ وہ اسکانمنٹ یہاں پہ جب کمپلیٹ ہوئی اس میں کیا تھا کہ ہم نے بتایا کہ کارپوریٹ کے لیے آپ لوگ کیسے پریپیئر کریں اسٹوڈینٹس کو, کیا کیا چیزیں تھوڑی بہت ایڈ کر لیں. Obviously پی ایچ ڈی ڈاکٹرز جو یہاں کے فیکلٹی ممبرز ہیں اور دوسرے بھی جو فیکلٹی ممبرز ہیں ان سب کو پتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم نے اپنے کارپوریٹ پوائنٹ آف ویو سے ان کو گائڈ کیا, ان کو بتایا, اینڈ دیٹ فیو تھنگز ور دا آئی اوپنر فار دیم ٹو.
1: اوکے,
2: سو اس کے بعد جو فیکلٹیز نے وہاں پہ اسکانمنٹ کی ہمارے ساتھ ٹوگیدر کمپنی میں جب آئے, انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں آ کے واپس ریپرزینٹ کیا, دے انوائٹیڈ می ایز ویل. انہوں نے یہاں کے باقی فیکلٹی ممبرس کو بتایا کہ وٹ وی ہیو بین ٹاٹ ان ٹوگیدر کمپنی بائی دا سی ای او. سو یہ ایک امیزنگ تھنگ تھی, اور یہ آئی واز لائک جب میں اسٹوڈنٹ تھی اور میری دفعہ کی یہ چیزیں تب ایسا نہیں تھا, انٹرنشپ پلانز نہیں ہوتے تھے اتنے اسٹرکٹلی اور اتنے فالو نہیں کرتے تھے, مطلب ایک کرائٹیریا نہیں سیٹ تھا. اب تو انٹرنشپس وغیرہ کمپلسری ہیں, مینڈیٹری کر دی گئی ہیں. سو اب یہ جو فیکلٹیز کانوینٹ سے ایک ایڈ آن ہو گیا, نہ صرف اسٹوڈینٹس کی برین اسٹارمنگ ہوگی بٹ یس فیکلٹی کے لیے بھی ایک آئی اوپنر, ان کے لیے بھی ایک لرننگ کا موقع مل گیا.
1: دیٹس ونڈرفل مس سارا. یہاں پر ہی ابھی ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی, اینڈ دین پھر اس کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ آن FM 92.6.

0: आते हैं, काम करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो यस, उनको अप्रिशिएट करने के लिए इट्स यू नो टोकन ऑफ अप्रिसिएशन टाइप. सो इस तरीके से हमने एक स्टाइपेंड रखा हुआ है उनके लिए.
1: जी, ये था हमारा अब तक का प्रोग्राम. थैंक यू सो मच मिस सारा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. आई थिंक स्टूडेंट्स को काफी हद तक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी चीजों के हवाले से. आई होप एंड आई विश के जो आप न्यू इनिशिएटिव्स की बात कर रही हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए नोट के साथ हम जरूर बैठें और इन चीज़ों को डिस्कस करें, स्टूडेंट्स तक अपने मैसेज को कन्वे करें, फैकल्टीज को अकॉर्डिंगली बताएं, ताकि ना सिर्फ स्टूडेंट्स को ये पता हो कि चीज़ें बाहर किस तरह से चल रही हैं, दे मेक श्योर टू गेट themselves प्रिपेयर एंड रेडी टू स्टेप इन टू द न्यू वर्ल्ड ऑफ कॉर्पोरेट.
0: थैंक यू सो मच वंस अगेन. प्लेजर टू बी हियर.
1: थैंक यू. जी लिसनर्स, सो आई होप कि आज का सेशन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. इसी तरह जैसे मैंने कहा है, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, कुछ न्यू एजुकेशनल नोट्स के साथ, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट के हाउ थिंग्स गो ऑन. और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, सुनते रहिए FM 92.6. अल्लाह हाफिज़.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke duniya.

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगाम मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Duniya.
1: Tu hai jo mujhse khafa to hai kya wajah? जानो क्यों मुझसे तू दूर हुआ, तू है जो मुझसे खफा तो है क्या वजह?

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Dunia.

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.
1: तू है जो मुझसे खफा तो है क्या वजह?

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.